लिटल मेलोडियस म्यूजिकल एसोसिएशन की सैजक सिंह सकप इमाले पापू से था जब इसई ताबिरे इसई की सैरेंग बी जयंत कुमार शर्मा मथंग दु ताबिर से मैरंगथेम इबोहल सिंह देगी लाइसोनी सैमा ताइबंबू सेम्बीबा इबोमा।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के

0: निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के

0: माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर त्रिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी त्रिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
5: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1954. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar Tiranga campaign. Vice President C.P. Radhakrishnan will flag off the Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in New Delhi in a short while. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to celebrate the Independence Day with honor, pride and glory and take a pledge for a developed India. In a video message posted on Instagram, Mr. Modi urged people to hoist the national flag at every home as part of the Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga, Har Man Tiranga campaign. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya flagged off a Har Ghar Tiranga cycle yatra at Major Dhyanchand Stadium this morning. Mr. Mandaviya led the rally with My Bharat volunteers of Delhi University. Talking to media, Mr. Mandaviya said that more than 1,000 My Bharat volunteers have conveyed the message of fitness to the nation through the rally. He highlighted the benefits of cycling for any nation to become a developed nation.
6: In Delhi, more than 1,000 My Bharat volunteers conveyed the message of fitness through the Har Ghar Tiranga cycling yatra. If a nation aspires to become a developed nation, it is essential for its citizens to remain healthy. Cycling promotes fitness and helps combat pollution. Cycling is also a solution to traffic congestion.
7: Cycling traffic ka samadhan bhi hai.
4: In Jammu and Kashmir, a mega Tiranga Yatra was held today on Boulevard Road along the banks of the famous Dal Lake in Srinagar. Lieutenant Governor Manoj Sinha led the rally, in which thousands of students, government employees, security personnel and people from different sections of society participated. The participants carried the tricolour and sang patriotic songs along the route. The J&K police band performed the national anthem and other patriotic songs during the rally. The JPSC-JSSC aspirants protest in Jharkhand has entered its 19th day, with students continuing their hunger strike and demanding action over the alleged examination irregularities. Tension rose after a late-night visit by the district administration to the protest site in Ranchi. Here is a report.
8: The students held a silent march last evening and said the march was intended to highlight their demands in a peaceful and democratic manner. Later, a team of district administration officials visited the protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium and spoke to those sitting on hunger strike. Student leaders said the administration sought details of

0: 비리 강에다나 다루의 아하 먹음 그렉 라오는 나쁜 시도 까현더버도 머두니드나 다비바 다비바 이게
1: 아두가 애학나 아니락 나자키바 하이바두나 아 나띠 애학부 마두부 밥 아마
0: 밥 아마 밥 아니 밥 숙다 핵다다나 능 아둠 란자키바두나 능 해나 파름니 능
1: 예 까리노다 란비바 란비바 와칸도 텐비게노
0: 아이 와칸 텐바 루바 아이 마두 칸데 아이 마두 칸데 하리브시니
1: 아두나네 이부모 야이마디 와칸 텔레다나 미니 야 낭나리바
0: 뎀메부 낭나리바 하
1: 아두다 나나에 학디 이나 아시수 레이티엥기 판자바디 나세다바도 아두나 훗 훗투나 헥 타자바 아두다 누나이자다바 펜제다바
0: 뎀메기 마름다 미와 낭나바 헤라 암마송 팍나이다바 Jai Krishna, Athali Pathali, Sadga Matta Patal, Saudha Bhuvan Marun, Tara Maries, the Bhimmegi, Imingte Hekta, Vada Kanagi, Jai Kareka, Amakok Koklen, the Gi,
1: Kadai Pauba,
0: Kongbi, Kongno, Nara Deva Mano, Kokoba Matu, Kyo Kyo Sungariba,
1: Matu Sungariba,
0: Me Yagan with the Bhim, Me Pugan with the Bhim. Bim may murm the Miwa Nangariba, huh? Kari hiding Nangariba, Tamu Tamuasi, no Tamu Haribsin Tam.
1: Aduburo, Kari Karino, Yam Lao, Bamidem, Tabakti Hek Suning the Ba,
0: Ya
1: Gada, Magami, Kabada Hoganba, Yam Kraponi, Kambu Kazaneda,
0: To, Nung Kangedana, Nung Ahumluk, Nung Angunda Ahumluk
1: Kari Ahumluk, Ado Ahan Baduna.
0: Ahan Baduna Ganjang, Awa, Mahadeva Mali, Haibigi, Ama
1: Aduga, Ani
0: Subaduna, Bim, Ikoi Duna, Rasi, Awasunata, Rasi, Kang Hekangadana, Aibu, Magi, Bibuttaiba, Utsuba, Kaigi, Moon, Setwa Matong, Hooked the Baka in a Haibigi.
1: Ado Siba Mahadeva Gimanai Masenke had the Buktoi Baharabana, Zagoibu Sanarabani.
0: Sanarangani, Sanarangani.
1: Aduga Mahadeva do Masamdi Sumhad Hekata Zata Hekunsile Quak Makon Lin Makon He Chazile Lin Giling at the Marine Marek is Tubusung.
0: Hi, Mother, this sumi. Kanagi Kapset, but Kapset P. Anganing I saw with him never the Mahadev Gimming Palladi Kapatuknari Nikano.
1: Me quite giddy Makukta Hiklanadana Ado Mahadeva Prabhu Giddy Lin Masamatana Magi.
0: Hik tarene
1: Aduga Lin Marum Marum Namagi
0: Hiku tarena Nakumako. I what is it takone? Aduway Drugai Mabu Koi Vilakumatamda Bo Sister Muniga Mahadev Aniesi Talk at the Kanarapani Mother the Bo Sister Munina Saudana Samnakara Sag Lawn Eklang Silupanima Mother Mahadev and Hatlage.
1: A sauber tadok lavamuni power sauber.
0: Though Matam Durakta, Mahadevana, Mahamunegi Magun, Silim, Manganba, Yade, Hiduna, Lin Oina Un Kribani, Haina, Babdar, bro.
1: Ado, Magi Manai, Yonko Panba, Hangui Mako Panba Sindo, No Mindra. Manai Dudi, Amuksukasa, Hibigi, Masidagi, and No Ningibadi, Magi, Usi, the Pamba, Samu Makung, and Ipanba.
0: Hi, Ganesh Deva, Ganesh.
1: Oh, Ganesh Deva do. Adubu, Miro Samuro.
0: Madunai Kone, I should call him Nine. Nandi Bingi, Madi, Ganesh Deva, Kogi, Swisti Puja, the woo. Kari Lyson, the woo soli, the gay, Migi Lyson, the woo soli dra, Natragasangi Lyson, the woo soli dry. Bahmen ka tapjan na tira.
1: Jummi, makoy ahum siya. Mina nung siyudo na kari gumba sa kakaura badi. Kari na pina ba pisa ganiya. Yung man ba nandito na?
0: Hayam pe.
1: Aduga hangoy man ba? Aduga na?
0: Din ka.
1: Ganyas taku dana.
0: Lapu pisa tare dana.
1: Mapuro iba sakta ti utay ba duga? Magira mani duga debi duga on thok na khine jakhe ke jeri ba wog jeri ba kaino ima lakshmi khoidau na thamba la karino phajaba amatta su mapayo dana adidi he natana nupi natadu mangai ne nupi na bu थांगो ताओ
0: यारे यारे तू असे नते नंगी सीवा थैदोई भाईदरा हां यारो यारो मधु सुक्या यारो नंगी नारान नारान हुम सुबदो खंगबरा
1: मधु न करी इरा
0: आय भीम मई पुक्चाओ वा कतन गदाम कोई थांग थांग ब हाइबगी खंगेदना
1: आय मा अदुदी मीन हाइने हाइबगी हाइबी बने कैनो
0: आय मीन हाइगे हाइउ नंग न हाइगे हाइउ मीगी असाव विवांग हक हाइबगी नंग
1: इबुओ याइमदा हाइजब सुनसते
0: इबुओ याइमदा हाइजब सुनसते गायना आय नके नलु नलोय तो नपुन सिदो नंग समाप्त कोइगेरो
1: हो अदुदी इबुओ याइमदा
0: हाय मसी अमुक सु एंगोंदे या
1: अदुदी ने दुबा सादा हाइजब
0: ए फरे फरे फरे अदुगा पुक्सा वाइबदुना कनादा हां
1: नुआ जदबा
0: या
1: इमाई बे मकुंतीना
0: हा हा मा
1: इमा कुंतीना कया द वाना मसा मंगा दो युक्षरीबा
0: मा
1: नुगाई चदीए
0: जननी
1: ए करी नोदा पक्सु पक्से देदा खरुंग सवदगी इसिं युबदो हेक मालबदो मफी ग चिंतरेदना
0: हाय हाय हाय
1: आयो
0: आइना थमोय थानुंग दगी कपचे बसिबु हां करी द पक्षे दरिबा करी द पक्षे दरिबा
1: मी जाऊ लग जाऊ दुगने पक्षे दी ये याम पक्षे दी
0: नंग दी याम पक्षे रे हाय पक्षे भी प्रेम पिरांग इवास द नंग करी खंगी हां
1: हाय मा दुबा सा सु नो पोरे
0: हाय मा ध्रुवा साहेब मसागी मखोंग फव बसमा तुमो हैदन साथ तो ब गंबा मागी मा थौरा ने निबु बसमा हैदन हेक तुमनबा आय माय मम्मिंग दो मधु पलकनु नंग मदो खक पलकनु को
1: इमागी आइमा इमागी बुओ इमागी आइमा
0: इमा नसा सिद लेजरे इमा
1: कनानो ने नंग वरी सारी बदु बुयाई मा
0: कना सुनति ए मा जननी नसान सुम मोंद्रं सान जबनीदा
1: हाय ननात लेरी बदु एक सत्र नगर गी रखस हिराम भादु दुगी मसल बि मा हिराम बिना चय नंग बो
0: या महा असिबो
1: याई मा
0: लेरे मो
1: याई मा हिराम मने कोई बसा थो कदरे इमागिना ते मुते लाओ याई मा
0: नबुंग तो हाना हाक ठीके अदुगा कंग नंगीना मथंगदा नंगी पाली कंग

0: 나 아이코 아무딱한 미요야.
1: 바로 이마 로이나 강자리 마다 아야 이마하기 구야오 볼로 볼락서버니 타즈비오 이마 세리 크리스나나 사키
0: 나때 나때 나항나 둠나 나 따따우 따우드나 미까야디 수레 낭나 자 토키바 하 까야디 수레 낭나 자 토키바
1: 나마 왜 하고 아무뜻산디 저런 탐반다 두저리네 이마
0: 파리 파리 시리 크리스나 나 토잔 리브 오이슨 아두부 비에마 이마부
1: 에 야니 이마 아빠만나 야탕 아주데 딱비요 하 까나 파세루게 까나 하세루게 이마기 나야 탕아도 막세나봐 딥다레 나바 칸다마판 믿네 헤쿠빠다 신통나 꼬이자방 암자가니 딱비요 이마 까리야 빰바
0: 이비에마 아이 코이 때루키 잔마시다 이마나가시 이사하기 나팜나기 믿겨 오이는 니자게 이비에마
1: 이마 나마오 아이하고 아우식 파오브 타세비다 타세비다 ये लंग लबतां नहाक नहाक की प्रंजब राना से लो इमागी अवावा से कौन भी हो है कितना
0: थांडो थांडो भी मसे थांडो थांडो भी मा थांडो
1: इमा
0: इमा चेसे होगलो होगलो इमा सी इमाना इसागी न थमुया दो अतु चांगिंग बगी वातनी करीगे अदुगा आत्मागा
1: इमा
0: इबेमा नुपीगी पिरांगी मरोल दी नुपी ते नखांगी नहे फरे फरे इमागी नाक तलाक पदी इसाबु करी हाइनिंग बगे निहा
1: इमा नमो आयाक्ते तोल बेरा खसनिंग ओल हाई बदो ओइसे रे इमा
0: ए दानो मानो कनानो मी हाई बसी दी साप मानबन धर्म तकाई गनु इसासी दी
1: इमा असुक मंगाउ थी खबन चाहि हुमोन हरि नाम सोंदु न लैरम उजब द कया कि मतिक पेन चक्रबन
0: ओ
1: मसी मग्नने इमा देव हरि श्री कृष्ण काल ओ कानायदन नसा सिंह असिबु ममीगुम इनदुन लै हाइनरि बदु
0: अदु बुजेमा नबुंग हिरम बदुदि इचायाय मना
1: प्रांदन द पिबी खैमा
0: हा
1: इमा इबुंगदो Saya tambah mampuk ke hek usul. Malam senaga hat ke tuk ke dah hek mahal. Dharma lay tambah mahat tu si je kisno ima. Bakti gima kut telan jadina goluk dam pangsa kraben.
0: Napa ngadu bunin dah tau riba?
1: Jagat bermenda si dah. Hing saat tau riba mahak ado. Ibu ni hai dunia nama u ehak na karam na san malu usagat. Yang biu ima. Masal ehak pawa. Ima khoyati nai haiduna prandanda phauba pigani haiduna tauram liba matawadi
0: ibema
1: imana kaya adawana na cha manga ga selaki adu sithak nija des asid aphanga phangba khara sa thakkan kaya adawana potha sa potha ki matu te ima nahak ne kab sakhi ba sinthak ki ba pirang marik marik ta नमो आया की पिरांग सु याव से की बनी नहीं माँ अतुपु इमा मस्से की ओना बदन पत्र वे इबुंग अदुन इमाग थान न चा सिंग तरुपु फादन पुरा ओ चाक ठोक सी हाय दुना नमो आया पुत्थार की बनी नहीं माँ
0: कृष्ण कृष्ण
1: मधु की माय ने पत्र वे इबुंग अदुन नगसी प्राण थाकी बदो
0: अतु दैवी माँ Nabunga duna prana tharam daigi mikup aduda nangonda laman kumla ohai duna adu kana lauram liba duna karam tauba
1: adu bu ima mi bu hat duna ibung gilaman singa da bagi saru mapok kaya rakta gumbi kauwa paap ta lukkrachan
0: krishna krishna
1: he saita saita na saki miga miga nung si sana na punna amatto ina himinna duna saukhat bagi marga da ikho se thangja ba dukhak natna hingsa ko bada tauja kharoi ima gi choro na saki ni ne ima adu bu ima namo ai hakti mitu amatta nga silak ni ima
0: kari kari hai ba
1: makoi ning thogi maya thanga do पालन तौ दब अदु गुम महाक अदो हिंग थम्मगी हक अदो हिंग चाब सिंग असिगे मखुत तक लैती

आकाशवाणी इम्फाल होजिक नुमिदुंग बपुंग तलानी थुई तारी कंगला चैनल की अनिशुभ थौरम परिंग संदोकपा हौजरी संदोकचरी बा मीडियम वेब मीटर चहुम निफ्यू दशमिकमा किलोहर्स नेपाल मरीफुनी थोई होजिक मणिपुरी दा नुमिदुंग बगी पाओ ताबिरसी

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझा कर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी

0: कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर

0: बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
1: तो फिर?
0: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
1: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
0: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
1: सुभाष, प्रोफेसर हुटन आ रहे हैं।
2: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
0: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर हुटन।
2: Is that right? You black monkey?
1: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
2: बात जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
0: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
2: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
0: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
2: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
0: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
2: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर हुटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
1: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
1: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
1: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
5: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
0: कौन? शिशिर?
6: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
0: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
6: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
0: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
6: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
0: ठीक है।
6: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
0: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
6: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
3: ये अखबार कहां गए?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया,

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जी

0: जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT की तेंबांग लोइनना संदोकचब थौरम उमंग ताबिरे अदोना थौरम ताबिरे बसी मीडियम वेब मीटर चहुम निफु दस्मिकमा किलोहर्स नेपाल मरिफु निथोइदा संदोकचरीबा आकाशवाणी इम्फाल की कंगना चैनल की थौरमनी।

0: लैया भक्त सुखाउदिते
1: क्रिया कया सानम रोब मतुं जगत माता इमागी मफमदगी भक्त मयाम पुनमक से नुंगाइब पीरुरगी हाइदना बिदाई पीरमगा बिदाई लौरागा जगबोंद हुई बोर
0: लेखोर पनी
1: भक्त पुनमक पुनुआइब पीगे हाइदना जगत की मबुंगो श्री जगन्नाथ न कांग तोंगगा भक्त मयाम पुनमक की ममांग दलेन थोर इये।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
1: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात की गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय और राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग

0: देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत के आगमन पर प्रस्तुत है फिल्म सैयारा से ये गीत। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2025 को यस राज फिल्म्स के बैनर तले और इस फिल्म में नजर आए थे आहान पांडे के साथ अनीत पड्डा और इस फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी। इस गीत के गीतकार राजशेखर और संगीतकार विशाल मिश्रा। गीत के गायक हैं विशाल मिश्रा और हंसिका परी।

फौज भाइयों के लिए अगली प्रस्तुति में रहेगा। 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म है तेजस, और इस गीत के गायक हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव। कुमार के लेखन और शाश्वत सचदेव द्वारा संगीत है। इस फिल्म का जो उत्पादन कंपनी है RSVP मूवीज द्वारा किया गया है, और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे कंगना रनौत के साथ अंशुल चौहान और वरुण मित्रा।

कार्यक्रम में ये अगला गीत है, फिर और क्या चाहिए, और ये गीत है फिल्म जरा हटके जरा बचके से। इस फिल्म में नजर आए थे विकी कौशल के साथ सारा अली खान, और ये फिल्म आई थी एक उत्पादन कंपनी जिसका नाम है मेडॉक फिल्म्स जियो स्टूडियोज़ द्वारा। और इस गीत में जो आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर, गीत के लेखक अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार सचिन जिगर।

फौज भाइयों के लिए अगला गीत है 2022 में रिलीज हुई फिल्म भेड़िया से, जिसके निर्देशक हैं अमर कौशिक और निर्माता दिनेश विजन। ये फिल्म आई थी मैडॉक फिल्म्स जियो स्टूडियोज द्वारा और इस गीत में आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की। फिल्म गीत के लेखक अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रदान किया सचिन जिगर ने।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे हैं फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम में ये अगला गीत की प्रस्तुति सुनिएगा, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से जो आई थी धर्मा प्रोडक्शंस जी स्टूडियोज के बैनर तले 2024 को। और इस गीत के लेखक हैं सागर, गीत के संगीतकार हनी बनी और नीति मोहन द्वारा गीत में आवाज़, और इस फिल्म के निर्देशक हैं शरण शर्मा।

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, 2026 में रिलीज हुई फिल्म मैं वापस आऊंगा। इरशाद कामिल की रचना में ये गीत है और संगीत प्रदान किया एआर रहमान ने। ये फिल्म आई थी अपलोस एंटरटेनमेंट बिरला स्टूडियोज विंडो सीट फिल्म्स द्वारा। और इस गीत में जो आवाज़ें हैं, नीलांजा घोष दस्तीदर और वेदांग रायना।

आकाशवाणी इम्फाल सैटिंग साने पुफा तुम उजांग लुर कने तंपब सैजान कतों कभी मितालम तंपब मई मेदें वेब मीटर फैथुम लेते पोन खचरु किलो हर्स फैत लेक्सत कने थारेन कने बमते सैजान कतों चम आकाशवाणी इम्फाल लाउद को सैजान कतों चम सम तंपब मई शिवाजी का मई हर घर तिरंगा कैंपेन तुम कलान का सुमई तिरंगा कंसर तुम मूंग अखा इम्फाल तुम पेरेस कैंपान को नाई मई मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी तुम ऑडिटोरियम को लाम पपनी कमूंग को तो गवर्नर अजय कुमार भाला चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान मिनिस्टर नुन एमएलए गोई खनि सरकार तुम कपी सिंह ऑफिसियल नुन कजापनी स्टेट को चुजाम खनि लिम लिम फुंगों पुखंग सरकार रेना अताव सिंथाव मिता नुन मैगोई को लेना किथाई पुखंग मूंग अकासै लाइमे मणिपुर राइफल पेरेड ग्राउंड को लांग पपनी स्टेट तों होम डिपार्टमेंट लेने समलांग लांग पदमे मूंग खोपता चीफ मिनिस्टर युनाम खेमचान डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोथी जिको होम मिनिस्टर गोविंदा स्कोंथोजम आर्ट्स कनि कल्चर तों मिनिस्टर खुराइजम लोकेन गजाव पनी कमूंग खोता मणिपुर मार्चेस टू पीस तुमे लमखो कभी इसमें दुईमे वीडियो खनि लेन पनी तुना सै स्टेट होम मिनिस्टर गोविंदा स्कोंथोजम ने कुकी सीएसओ वर्किंग कमिटी तो में फान गोई रे दौरान उखरुम डिस्ट्रिक्ट तो संकाय को परिलना तांग में तंगो सलेन चंगाई फाइनल कने सांग परेन को ते तत कई बमे काउंटर इकोनॉमी ब्लॉक के खनी टोटल सेट डाउन हन पकन थे ब्लॉक के हम पक में तंगो को गे ना में रम पो नुम पो में गरी फाइव डे लेक्चर उखरुम थंग गुत कने हाईवे लान पर में हे में गोइता सांग गोई को खम नम मई मंग तीत मई कुमना कगे ना मिलंपो नुन खम नम मई मंग फुंग फुंग निमे खौ कभी सुमे फेकाम खले तुना गोविंदा सुसा कने लमदाय बीजेपी मंडल रेन समलांग हर घर तिरंगा जात्रा से के एस इबोमसा एमएलए रेन कपी सिंह ना नुंगदा को ना मे कतों ककाय खुरिन तथा कने संत त कमों कामे ngan tat kame tang kho hangung dana nungada khungalo kone sangtat khote bjp infal istong tan thung minun

आकाशवाणी इम्फाल इच्छु चौकड़ों हुंदा पोंगों है फिर मक्के कुछ माओ में जी कुटु का दास होता है यो जी कुटु का दाल है असोस फुकनी ये साव मुस्सो को शर सो कदा कुछ ले नलु में पेस चिचु वानो को प्रा कुछ कुटु दा फले इच्छु जाओ इको मिनो इजो को माओ लाले नो चक्र ले शे आकाशवाणी इम्फाल इजोको अखाकाई खोफुजे नो प्रोबिले हर घर तिरंगा कैंपेन खुलेनो इजो MSFDS जी पैलेस ऑडिटोरियम हेनो तिरंगा कंसर्ट 2026 चिथे साउसोपिए जो सोवु लही मणिपुर गवर्नर अजय कुमार बल्ला चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान मिनिस्टर मई MLA मई ए स्टेट सरकार जी सीनियर ऑफिशियल मई नो वोलोपिए जो सोवु लेनो सनाले बक मणिपुर तो कुकु मणिपुर स्टेट सॉन्ग कंपोज ए ओलोजो कपी रूप राग मेंबर मई कल्या ठेकुटु लिरिसिस्ट बी जयंता कुमार शर्मा फुख्रुमई सिटेशन ए कशाल लाक कली कुचुपिया इट्स मुख्रोपिये ओलो चशेला कल्या आर्ट्स पेनो नो नफी ले शिपुलो कुरु ए मुसो सहा अक्वा मुसो पेनो का हिपुलो कुरु दुनो उले सुकुहु पुपिलो कुरो मचोवो सरकार नो उले कोनो पिपुओ बुएटो चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान नो पेमनी पिए मुफोले MBBS लार मुदोना मै क्रेकाली सालो कुरो सरकार मेडिकल कॉलेज सनापति डिस्ट्रिक्ट लेखी फ्रुठो पिलो कुरो ही मणिपुर कैबिनेट नो अप्रूव सोपियोटे कैबिनेट अमीमो ही मणिपुर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान सिंह नो इम्फाल ले मंत्री पुक्री है कुबु सिविल सेक्रेटरेट हिनो चिठे साउ सोपिए एशियन गेम्स ए कॉमनवेल्थ गेम्स कुक्रू कुचोले मणिपुर लेनो तलो कुक्रो मेडल नि कोलोमई कला तलो उजे जो कुचो मई इंसेंटिव कसा पिले टिचो हिया कैबिनेट नो अप्रूव सोपिए मणिपुर ले कुक्रू कुचो

आकाशवाणी इम्फाल और जिनिपुंग थरुक मिनट हरा ताहौकीद आज उ टांगखुर प्रोग्राम हेने चंगाइर रेडियो मुनादक ने तुम साइको और मंग फामे सेर नौ

अरोइबा बिदाई फिल्म दगी सही मताबिरे कदोल गनी सुबह दल खुच्चरी बा फिल्म हाईएंग नकनागी कंजल दा रोहिणी शेरिंग बा डब्ल्यू गोजेन सेबान बा युमनाम सुरेन कदोल तमजरी मैं अपन तामिनसी

कौबोधियो करमनु पीनु म संग थी बने इतई कौरी बजीगु करीगी नो हायुब कांदे दी इमा कया दी कुई हे चखीबा पीरदा नहा मु कोई हरे इमा आई हूं तो तालु गेदना लांगोई से

करी हाय मसीदी मसक थी रबनु पी में लागा आई वंदे सी मा कोई न वंदे जी तई कोई मान ने आई ने ले के बदल ले हंदे चलो इन हक तान बदा मा फकियत का सगाई बम तंग ले दे इन हक तो वा गी बा हाय रे मगा आवांग थंग बिन खा जी ला सगाई बम ले मी नंग लो फोको हाय बे दे सब चंग जिल लगा ला दु द थारी रे मुक्तंग तुसी बों वा मदे दा ठक ठक निक ठोक पदा सिंग चुन गुम फोंग ने थलम बनी हे इमाई बुंगा इमान करी तम हम खंग दे इमा कया कुई रे हक कोई रे इमा आई तालु गे दो तालु सोई देना।

0: खुंगम की थौरम ताबिरी अदोम तोंगन तोंगन बा मखल मठल की थौरम कया ताबिरी बा से आकाशवाणी इम्फाल दगिने
1: दासिं खैगा एचआईवी टेस्ट तोरुगे दोबा
2: कैगिन नबानि दे एचआईवी टेस्ट तोदोइदे
1: इबानि लहोमगी अहन मसेन हाइनाख्रे अदा इबानि एचआईवी टेस्ट तोथोसेना हाइनारमबा
2: नबानि दि यांगकुइरे दाइन खंगनारपा अदुगा कैगिनो एचआईवी टेस्ट तोदोइदे नबानि गिसे अमना अमबु याम थाजना दबै वानिने
1: अदैना तेदा एचआईवी टेस्ट तोथोतुना एचआईवी लै नत्रग लैते न खंगतो फाइबसे याम न फब थबकनि
3: मसि हकचांग फन लैबा अमदि अखुयानिगी तुमगी पिनसिगी दमकनि अदुना एचआईवी टेस्ट तोदुना इसागी एचआईवी स्टेटस खंगतो फाइबसे रुटीन हेल्थ चेकअपकी सरु अमो हेलादबने
2: एशु एचआईवी टेस्ट तोथोमिंगे दुदा कैगुम पॉजिटिव ओइरागदि मयाम न खंगोइद्रो
1: एचआईवी टेस्ट तो फाइबसे कॉन्फिडेंशियल नि अदुगा नंगी टेस्ट की रिजल्ट नामतद हाइदो अदु नंगना एड्स की मरमदा हेन खंगिंगबदी एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 द कॉल दोसलो अदगी अकुपमरो लोइन खंगने चलके को
4: गोल्ड कॉइन जीआर लोमी की याइफन अब जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड ना लोमी की फोकटोक बु चादा तरह दगी तरह मंगा फाउ में हेंगे धन बंगम लबा अच्छा उब खुदोल अम तंबीर रे गोल्ड कॉइन जीआर दे याउ रिबा सी विद एक्सट्रैक्ट ह्यूमिक एसिड अम दी एमिनो एसिड ना होपाम बी बु मसानिक तिन पोखली केटिन अम दी क्योलिन असिना हो मरु निन तिन चंग बंगम ली होहाम चेलन दे लो संग मम दा सुपन की किलो हुम खत साइ थोक पियो गोल्ड कॉइन जीआर फंग फम एआर एग्रो के शंपात अम दी अदोंग नक नबा तिल
5: हेपेटाइटिस का सागो नरीबा मियोसिगी लायेंगबदा थिंथगुमसी
6: हेपेटाइटिस बी नारबा ममादगी मचादा लैना आसी चंगहनदबंगमले अदुना मिरोनबी नुपी सिंगदा लैना आसी लैब्रा खंगदोकबा नत्रगा लायेंगबदा पंथरोइसी
5: पोकपदंगाइरिबा गांगसिंगदा थिंथबतौदना सुक्सोइसोइदना पोकपगा नत्रगा पुंकुन मरीगी मनुंगदा हेपेटाइटिस बी गी बर्थ डोस काप्थुकपिगदबनि
6: हेपेटाइटिस सी लैना आसी हिदाक नमा पुंग फाना फानबंगमले
5: वायरल हेपेटाइटिस लायंग नबा हिदाक लांगथक सिंग नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम गी मखादा रिम्स जेनिम्स अमदि डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सेंटर सिंग दा लेम न फंग हेंजरे
6: हेपेटाइटिस बी गी ओइनदि हिदाक थादुना हेंजिल हंदब यारे
5: हिदाक सिंग असी रिम्स जेनिम्स अमदि डिस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट सेंटर सिंग दा लेम न फंग हेंजरे
6: मियाम नंगसी मक टेस्ट टोकटोकतुना इसा इसा गी स्टेटस खंदोक पियु मतम चाना लायंग बिदुना लैना आसिना थोगलकदबा हक्षेल की चैथेंग सिंगदगी नाथुक मिनरसी बाउजन जरीबा
5: नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर
7: एक्जोटिका एक्जोटिका लौमी की अनौबा याइफा पाउजेल एक्जोटिका हाइरिबा तिलहाक हिदाक असिना मना ककपी मना चिकपी मना कोनछिनबी मरा पुंबी उसिंगजा मानबी मरिक उतोंग नुंगी वाइकुप मानबी अमदि अतै अतै लौमी नमी पाइनरीब तिलना कयादगी नाथोपंगमी तिलहात हिदाक असिना लौफमबु कुइना तिल सिंगदगी नाथोपद नत्तना फौबुसु मपांगन कलखनमंगमी सावोंगसु फजहली सिजिनबियु एक्जोटिका अदोमगी मनाक नकप तिलहात हिदाक योनफम सिंगद फंगली एक्जोटिका एक्जोटिका एक्जोटिका
8: हो लौमी एखुइगी नुंगाइरब पाव मतमजगी लाकपने पैसासु लैजदब मीसु लैजदब एखुइदि अमतंग चाइबदा पामबी द कानब पिबा होंगछु होंगबा मसन तारा तरु होनमोन अहुमसु याउरबा जापान कंपनी मिजुसिन पुथोकबा अल्गेरिया प्लान ग्रोथ स्टिमुलेट पामबी बुहेना मपांगन कलहनबा हेना वा कलहनबा मसामउ फहनबा पामबीगी मचिनजाकनि अल्गेरिया फंगफम थौजाल एग्रो मणिपुर सगोलबन मैनो लैरक अमदि मना
9: नेट यूजी लिसिंगनी कुंतरुक तगी क्वालिफाइड ओरबा कैंडिडेट सिंगना मणिपुर मेडिकल ई काउंसलिंग लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरेत सरुक याबा यागनी ई काउंसलिंग पंथोक दबा सिट सिंगदी रिम्स जेनिम्स सिज एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस साहस

अदम्य थरम दाइबिरी बा कंगवा चोनी लसीदा नसी निमिदांग पुंगनी पाल हेक टाप मतंदा लांथुक जगनी रेडियो लीला नुमिती असुम थेंजिल लगली लीला सिगी अरोईब सरूक पुंगनी पाल मखाई लांथुक जगनी नहारोल की खंजल नसी की नहारोल की खंजल दा थमजरी खनने नबा लखुत जगदबा हिरमना नहा सिंह ना रिलेशनशिप दा थेंगनरी बा एब्यूस असी करमना नाटोकनी निमिदांग पुंग मापल मखाई कोई ने चतुना इसई खनबगी थौरम लांतोक सगनी निमिदांग पुंग तारा मणिपुरी फिल्म इसई थमजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांतोक सरी रेडियो लीला नमिति असुम

0: 짜게 박이네티 메라 게암 타오케 해봐.
1: 멈버디 쇼이드래?
0: 아스 박이 동루고 공나 짜짜키니?
2: 아이 메라 아이 그니 아들아이 바 가리시 에쿠이 사기 가리 만크레다 아스 단자시 더부 무토
3: 아이 그대로 했다다 불러블레르 미시보
2: 사르 아이기 카르도 타야 펌서 오이토 크레사 카이티엔 타나 포트파 세크리 시기 워크숍 시수 농실 아무타 레이트레 하드나 포트피 와이바 야드레네 사
3: 카이텔 오르디 라피다
4: 아두네사 에소 사이브 카 이바네 부디 ngaira suya ba a sa no pieni yaw buji da sa
0: sa awa thabisi hojik ta khok pani
3: ai yarani ai ada khara sa sile a adudi kamai tok tare mayam se sungai ki dore na traga ai gi da punna sa paya gadra kamai tok si kya
0: as ta mo pi saki si khara kui na chang do mali da sa gi da yaw bona adum pha do mali e ai amuk ta haijaru khi ge
3: ho अमजिल आदि अमजिस छै यावरा निसा अदम तन्दौरिदा हाइद्रदि फजदेन हाइर बिवाने यारकतरदि फरानि
0: तामो पिसा
2: अ इबेमा
0: अ अमुक्त लाग बियो सोमदा
2: अ केदोरि इबेमा
0: कैनो अवा थबि मपु मम पाइरि दुना
2: अस अकोइ सारगे हाफ केदर तौनिदा
0: अवा थबि गलाइदि साना मागी गारिदा थाजमा बिबानि चख्रेसिना हाइरि
2: ए फरेदा ai di khoi sar da bu hai ja gi hai da khalam li bi ne
5: tamo ai di line gari da chal su ya ni yam theng bu su na tri line da chal si rai che
0: kai nu nang na hai si bo wa sa ai da gi lai ri si bu line gari am ta chen bu su u de nu ngai roi da sa na hai ding na si da lo ra si ba tamo bi sa
2: ai bi ma
0: o hoi hai bi ru ro
2: hoi hoi e so sa ai si bu kai da ri me ra
4: na nau nu pi do lai ho khara le ho ba
2: hira mira haujik na ba ya ba matan chunati nangad aigada ne le ho gaduri si ai akoi sar gi manak tatne am to saru ge ko
4: ai na khoi ni sidi lai ho pai da ko
0: mira nang iru jara mo yeng asi
4: era adui wadi ngan na iru jara ga sangan na thong thora ga sara lai po ni khangeda na e thajaman bia kai gi no nang nang a sai da gi mai thung du ngsang na chok chok thara gale yidu bo
5: ka shi tawdi da mera
2: a ibe ma mai ngobia a thajman bi lao lao lao ai koi gi sar gi gari si da ne pun na he ta chal hou na ba lao lao lao
0: lao sa lao ra si
4: as ani si ba yum jang ngan na yaw ra ni kai na ka ya ra harau ni yung ne e
2: a sir a maning gi thong si ang tang du pi ro ba sa a khoi sar gi awa tha bi si ang ta hap si ge to ba आहा आई बीमा लाओ लाओ लाओ एकोई सारगी गाली सीधा काख पीरो लाओ लाओ लाओ काख लाओ
3: दादा दुदी हलम मगे
2: फनी सर
3: दादा उसे है कि आप अगर लाख पीरो
2: फनी फनी सर
3: नसाई मयाम दी यंतो पर एकोई की ग्राम सभा में दी ग्राम पंचायत सीधा पाइकल लिबा में दी पाइकल कदा बताओ सिंगी रिपोर्ट या वो बुक लेतो मधुबु कनान सेम
0: लाल अब रोसा
3: लाल ले है बनती एपीओ ना नहान पिरक पदो दत्ता पी बेदा वाट पकड़े याऊ बा आई ने सेम दो के ना ड्राप सेम अगर तुम काओ रो बा तापी शक्ता बुदे ने फोन द हाई की बनेगा सी एम बदे दी पसन्द सेम अम
0: अदू बुदी तामो पी शक ना हाई लगता ना था जमा मीना सी एम बनी
3: ओ
0: ई बगी था बक्सी दिने ऑफिस सी द माने हेक जॉइन तो बुदे की याम ना मतिक पांगी सा कोई था जमा बिसे हाई हाई ए थागत बगी वानती मराई बक्ति दने एमए की फाइनल एग्जाम दो थाहौ दबगी वानी पुरा एमए नि
5: इचे यारे बा
3: जॉइन तो बुदी कयाम कुइदा जा
0: सही फारम खिरोइदा सा थाजमन बिदंग न जॉइन तो बुदु बु
5: ममांग चेही की अप्रैल दने
0: सा पुरा लान दने तोरी सी दाइन हाने स चंग बनी सही मंगा पुरा चंगख्री अस मतम सिका हाइरु रबुदी चंग बु चंग रि हाइरि ने इदी थाजमन बिया अब कमिश्नर सिलचर देगी नहीं हाई देने माले बिगी ने सिक्की दिंग ने यार पैवा ने हाई उन्हें नम सो इन हाई से चुम जा
5: इसे न लोई न हाई रसी दी
3: युम्बु काय काय दा
0: आई ना सगों बंतेरा अदुगा मागी ना मालूम एयरपोर्ट मनातनी मागी दी इंखोल दो लाई बा चाहिए अनि फारंग खिरोई दा चुम दो था जमा बिया
5: हुई चे
0: हाई बा सा लंखाई सिदा अमुक्त खाम बियो यागद्रो
3: यानी

ताबिरे अयेक पलाई फिल्म दगी पुष्परानी यमदी पुष्परानी की नाटक खोलजन खंजल्दा आर के मिम्चान सेरिंग बाओ के नमक समना सेबान बा फिल्म इसे खनवीर पुष्पिंग दी अवांग वबगाई दगी या स्कूल नावरे ओक्रम इटो अवांग लेकिन थबी दगी मंगले नंबोल लाइटोन जम दगी रसेंद्रा मधंग दमुग लोकचरी कच्चा अनि खंजल्दा अमरजीत अमदी सुस्मिता इसे इसी की सैरिंग बखाइडेम इमो सैबानबा अमरजीत लौरेम्बा

ताबिरी बैसे सी कनाना खन की बैसे नो हाई बतु खन भी की बा मियो ये दुना दी सोई तो नमक की खमीरम लगनी इसे ऐसी बु ताबिरी दुना एसएमएस की कुतांग द खमीर ली बा थवाल हाउका ममंग लेकाई देगी माइमो केशोर कुमार लोना महकी ओजा थेबा राजेन ता सोदाबी ता रूबी हाइनी बिरी मैं अपुन नंगाई न तमिनसी।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार आपके लिए, स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। घटाओं की शॉल ओढ़े ये रात आई है, आसमान ने बिजली की पालकी सजाई है, नाचती है पुरवाई बादलों को झूम के, फिर आया है सावन झूम के। कुछ यही कह रहा है फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत।

रिंगों की भीड़ में गुम हो गई हैं बस्तियां, अब कहां सावन के झूले, अब कहां वो मस्तियां। एक वो भी दौर था जब सावन के मौसम में गांव की ब्याहता लड़कियां अपने पीहर आती थीं सहेलियों के साथ झूला झूलने। सावन आते ही ससुराल में हर लड़की के दिल में ये उम्मीद मचलने लगती थी कि मायके से उसका बुलावा आएगा और वो फिर से उन गलियों में जाएगी जहां उसका बचपन बीता। वो फिर से बीते हुए खुशनुमा दिनों को जी पाएगी। इसी कसक को संजोए हुए है मायके को याद करती बेटी की दिल की पीड़ा को बयान करता फिल्म बंधनी का ये गीत। कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड करते वक्त आशा जी की आंखें भरी हुई थी और जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो आशा जी के साथ साथ संगीतकार एसडी बर्मन और डायरेक्टर बिमल रॉय भी फूट फूट कर रोए थे। महसूस करते हैं अपने पीहर को याद करती एक बेटी के दर्द को इस गीत में।

केवल बेटियों को ना केवल बेटियों को सावन का इंतजार रहता है, बल्कि पूरी कुदरत इंतजार करती है, और खास तौर पर वो महबूबा जिसके महबूब ने सावन के लिए कुछ वादे इरादे किए हों, मसलन झुमके कंगन लाने का या मिलने आने का वादा किया हो, तो तैयार हो जाइए अपना वादा निभाने के लिए।

किसी ने क्या खूब लिखा है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, जो डाली फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, एकदम से अंतरिक्ष के पार, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। वैसे आपने देखे हैं सावन के झूले? शायद हमारे कुछ साथी झूले भी होंगे, है ना? मैंने देखा था अपने बचपन में, आज भी जब आंखें बंद करती हूं ना तो झूले पर पींग भरती हुई, कजरी गाती हुई गांव की भोली भाली सुंदर महिलाएं दिखाई देने लगती हैं, जैसे फिल्म बहू बेगम के इस गीत में मीना कुमारी अपनी सखियों के साथ झूला झूलते हुए गा रही हैं।

जब भी बारिश मेरी आंखों में उतर आती है, बादलों में तेरी तस्वीर उभर आती है। दिन वही दिन है जो बीते तेरी उम्मीद के साथ, शब वही शब जो तेरे साथ गुजर जाती है। यूं तो हर प्रेमिका चाहती है कि सावन में उसका प्रियतम उसके पास ही रहे, लेकिन अगर किसी मजबूरी वश वो दूर है तो फिर वो अपनी बातें चुपके चुपके पुरवैया से करती है। फिल्म चुपके चुपके के इसकी

आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई। दिन भी डूबा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, जिस जगह बुझ गए आंखों के दिए रात हुई। सावन के बिना मानो मोहब्बत की हर दास्ता ही बेजान सी हो जाती है। सावन का ये खुशनुमा एहसास दो दिलों को भी भिगोने लगता है। कुछ कहता है सावन, क्या कहता है सुनते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश के इस गीत में।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक

0: का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar. Market Mantra ke taza ank ko lekar hum hazir hain. Hamesha ki tarah arthniti, karobar aur share bazaar se sambandhit taza khabron ke saath hum in par charcha bhi karenge aur charcha ke liye humne aamantrit kiya hai desh ke jaane mane varishth aarthik patrakar Siddharth Singh ji ko. Siddharth ji, namaskar. Karyakram mein aapka swagat hai.
2: Namaskar Manoj ji.
1: Aaiye shuruaat karte hain angrezi mein headline se jise lekar maujood hain Nishit Kumar.
0: The benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year.
1: घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया. निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. देश में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा भू राजनीतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार. ये भी कहा अगले साल बढ़ सकती है मांग.
0: The view

0: Views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई.
0: The benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The Sensex dipped 188 points or 0.24% to close at 77,966. The Nifty dropped 36 points or 0.15% to settle at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade.
1: आइए नजर डालते हैं Sensex pack पर. सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए. सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा. उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे. भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए.
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप लूजर्स हॉस्पिटल्स डिप 2.8%, आईटी लॉस्ट 1.4% एंड फोकस्ड आईटी फेल 1.5%. इन कॉन्ट्रास्ट टेलीकम्युनिकेशंस क्लाइम्ड 1.9%, पीएसयू बैंक्स रोज 1.8%. At mid-small private banks, quality tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ. 95.33 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है. एनएसई का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ. क्या रुख दर्शा रहा बाजार?
2: नहीं देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल या जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें दोबारा से हमने तेज़ी देखी है. तकरीबन $90 के आसपास दोबारा क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए हैं. तो कहीं ना कहीं बाज़ार में जो इमीडिएट रीज़न एक प्रेशर उसका दिखा. साथ ही हमारी बाज़ार में आज एक और बड़ा कारण था, वो आप जो कह सकते हैं एक बड़ी जो उद्योग जो समूह है, कॉरपोरेट ग्रुप है, उसके जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है अपना अनाउंस किया कि वो अब उससे इस्तीफा दे रहे हैं उस पोजीशन से. तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उस खासकर उस कॉरपोरेट ग्रुप के जो शेयर्स थे, क्योंकि वो तकरीबन हर सेक्टर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में उस ग्रुप का जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है उसको, तो उसमें भी हमने गिरावट देखी. तो मुझे लगता है प्रमुख जियोपॉलिटिकल क्रूड ऑयल के दाम और जो तेज़ी और इसकी वजह से, और जो एक और अनिश्चितता आ रही है जो अमेरिका में जो है महंगाई और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, वहाँ का

0: अनिश्चितताओं के दौर में जब बाजार में गिरावट यानी सूचकांक काफ़ी ऊंचे स्तर से लगातार नीचे स्तर पर, और अब तो एक रेंज बाउंड यदि जिसे हम कहते हैं उसमें आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वहाँ उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए ताकि साल के अंत में या दो साल में उन्हें अपने निवेश पर नुकसान ना उठाना पड़े?
1: नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अगर मैं इसका जो आंसर जवाब शुरू करूं, जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाएं दुनिया के करीब करीब कई सारे देशों पे, जिसमें भारत भी जिसका पार्ट था, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे बाज़ारों में एकदम से जो है काफ़ी गिरावट आई। कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि FIIs ने तो लगातार निकासी की, लेकिन जो हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर था और साथ साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका विश्वास हमारी बाज़ार पर लगातार कायम रहा। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा, एक निवेशक को जैसे कि जैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाज़ार में पिछले लगातार दो साल की अनिश्चितता में जो अपने विश्वास को कायम रखा है, मुझे लगता है उसमें कोई भी कारण नहीं है कि उस विश्वास में किसी तरह की कमी आए या उनके निवेश में कमी आनी चाहिए। मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और हिंदुस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ का पैरामीटर देख लें, आप महंगाई दर देख लें, साथ साथ आप सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे रिफॉर्म्स हों, चाहे मेक इन इंडिया को लेकर जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को भी की भी घोषणा की है, और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कॉरपोरेट टैक्स हो या GST का कलेक्शन हो, तो या UPI का जो पेमेंट्स का जो डेटा आ रहा है उस सब में कहीं ना कहीं, या जो गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है उसका डेटा, तो उसमें जो है मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा पीरियड है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम जो है हम अपनी 90% जो ऊर्जा की जो मांग है, जो पूर्ति है, वो विदेश से करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हमारे ऊपर बिल्कुल, जहाँ थोड़ा महंगाई पर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी पर भी एक प्रेशर दिखेगा कुछ दिन के लिए।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3.7% की वृद्धि आज हुई है। जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। आइए लौटते हैं स्वदेश, यानी एक अच्छे आंकड़े आए हैं CPI के, यानी उपभोक्ता मूल्य से संबंधित आंकड़े आए हैं, और हम उन पर श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे। खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में थोड़ी सी बदलाव आई है। खुदरा मुद्रा स्फीति दर जुलाई महीने में वार्षिक आधार पर इस वर्ष 4.45% पर बढ़ गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से थोड़ा सा ऊपर इस बार भी है। गौरतलब है कि लगातार दो महीने से हम इसमें इस दर को 4% से ऊपर देख रहे हैं। जुलाई में मुद्रा स्फीति की दर 4.38% पिछले जून में थी, जबकि इस बार थोड़ी सी बढ़त है, मामूली बढ़त। 2024 आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया बनाया गया था, उसके बाद 4% से ऊपर लगातार दूसरी बार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर, यानी खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.84% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.96% रही थी। खाद्य मुद्रा स्फीति, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, वह जुलाई महीने में 5.52% रही, जबकि जून में यह 5.32% थी। यानी खाद्य मुद्रा स्फीति में अच्छी खासी बढ़त, यानी थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जुलाई में जो मुद्रा स्फीति महंगाई बढ़ी, उसमें मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्टोरेंट, उसके अलावा एकोमोडेशन सर्विसेज, खाद्य और पेय पदार्थ, विशेष रूप से जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उनके दाम भी बढ़े हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम के आभूषणों के दाम अच्छे खासे बढ़े। अदरक भी महंगा हो गया, और लहसुन भी महंगा, और प्याज भी महंगे हुए हैं इस दौरान, जबकि जिनके दाम कम बढ़े उसमें आलू, भिंडी, टमाटर और मटर शामिल है, और साथ ही वाहन भी, यानी चौपाया वाहन, यानी गाड़ियों के दाम

0: भी नहीं बढ़े। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी?
1: नहीं, देखिए मनु जी, जो अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी, तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है, वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था, क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था। और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसकी वजह से, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे, तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको हाँ चिंता ज़रूर है, क्योंकि मानसून ख़राब है तो, और खास और साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइजेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन शायद उससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए इस समय पे, और ये इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि जो मैंने पहले बोला, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो उसका जी। बाकी चीज़ों पे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी वजह से। और सर, उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो। तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना
2: रखा है। इन फैक्ट इफ यू लुक एट द अपटेक इन द डेटा 4.4%, सो दैट इट हैज समथिंग आल्सो गॉट टू डू अ बिट विद द न्यू 2024 बेस ईयर सीरीज एज वेल, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो दिस डेटा हैज कम व्हेन दिस 2024 बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस सीरीज हैज कम इनटू इफेक्ट।
1: Nishit, right. Absolutely right, because this was just introduced in January and yeah. it captures a very wide range of items. It gives you a complete picture of the Indian economy, also the latest items. Absolutely. Lot of obsolete Absolutely. Items were discarded.
2: Rightly so, yes.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जींसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त से सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर पर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कमोडिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है, वह किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं?
1: जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं मनोज जी, और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स, जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हो या आप

0: क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी उसका फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाज़ार में, साथ साथ जो हमारे बाज़ारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है।
1: Right, and moving on to some other stories, Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to a discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermine the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day off the other day. So now with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, that is quite some data to 1.2 million per, barrels per day. How do you see this?
0: Nishit, obviously this would impact the growth, the world world growth also, and the obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how it, how far and how soon it will end. Plus the other reason is also the price of crude oil going up. Obviously that also brings down the demand. So that also is also leading to the fall in demand. Not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up.
1: Right.
2: यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या?
0: नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है,
2: कमोडिटी
0: है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसका उसकी कीमत बढ़ेगी तो उन उस सेक्टर में जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करे या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेजी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी, अब आज हम करीब करीब 40 देशों के से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं, प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं।
1: Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comments, Siddharth, where do you see the crude going from here?
0: Nishit, I think it's very difficult to say. This is a question, one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long, because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty.
1: More than and, that, Siddharth. If I'm not wrong, it came down to around 70 even.
0: Yeah, 70. That's why yes. I said below
1: yes.
0: 80.
1: Yes.
0: And now
1: yes.
0: again, inching up to $90.
1: Yes,
0: so I think it all depends on how, what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached. Because all the each time they enter into an agreement, it breaks the next day.
1: Correct.
2: आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहां से भी समाचार चमक तेज होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों का भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू से, आइए सुनें।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनुराग से, लता मंगेशकर की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर, तो आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड चैनल से और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के लिए। फिलहाल आइए इस चैनल पर अब सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए।

0: जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla, stating once again that he is open to having a detailed discussion on several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in Parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: In Jharkhand, despite several rounds of talks and assembly gherao, no breakthrough has been reached between the government and the protesting students. The students are demanding cancellation of the 2024 JSSC CGL examination, through which more than 2,000 candidates have already been appointed in various government departments. The state government maintains that the examination cannot be cancelled at this stage, citing judicial scrutiny by the Jharkhand High Court and the Supreme Court. And

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारा सफर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो खुशबू है फिजाओं में। तुम्हारे होने से ही आबाद है ये जहां, वरना वरना क्या रखा है इन खाली हवाओं में।

मेरी सांसों में शामिल हो, तुम मेरी सांसों में शामिल हो, सांसों में मेरा तुम्हारा ही नाम है, तुम हो तो इस दिल को सहारा भी तुम्हारा ही है।

इस दिल का क्या करें जो कहीं लगता नहीं, तेरे सिवा इसे और कोई जचता भी नहीं। यूं तो महफिलें सजी हैं चारों तरफ, पर तेरे बिना यहां मुझे कुछ दिखता नहीं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तेरे संग ही देखे हैं मैंने सारे सपने, अब तो इस दिल में बस तुम ही लगते हो अपने। तू साथ हो तो हर मुश्किल बहुत आसान लगती है, वरना वरना तो ये तन्हाइयां भी हर पल आती हैं हमें डसने।

तुम छेड़ो प्यार की कोई दास्तान, मैं सुनती रहूं और थम जाए ये जहां, बस तुम हो मैं हूं और हो मोहब्बत की बातें, इस हसीन पल में खो जाए हमारा दिल और जान।

खफा होते हो हमसे इस कदर तुम? क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम? तुम्हारी बेरुखी से थम जाता है मेरा सफर। माना कि गलती अनजाने में हो जाती है, पर तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा दिल और मेरा घर।

करीब आओ कि तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, करीब आओ कि ये दिल तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, कि कोई और चेहरा

दोस्तों, ये सफर तो अभी यूं ही चलता रहेगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्र

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 1:11:27। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ। दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ कि अब तो आ जाओ कि कटती नहीं ये रातें तेरे बिन।

जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, लगता है जैसे पूरी कायनात आ गई हो मेरी बाहों में।

तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए यूं ख्वाबों में नहीं, तुम हकीकत में मिला करो हमसे।

देख लो तड़पा कर भी हमको, देख लो तड़पा कर भी हमको अगर सुकून मिलता है तुम्हारी खुशी की खातिर, हम वो दर्द भी सह लेंगे।

चांद ने बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, चांद ने बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि आप ही जाओ यह हसीन रात मुकम्मल हो जाए हमारे लिए।

जुबान खामोश है पर आंखों में तेरा ही इंतजार है। जुबान खामोश है मगर आंखों में तेरा ही इंतजार है। सुन सको तो सुनो, ये दिल सिर्फ तुम्हें ही पुकारता है।

कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, कदम तुम्हारे साथ चलें तो हर राह मुस्कुराती है, और ये जिंदगी तुम्हारे संग एक खूबसूरत गजल बन जाती है।

0: ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा हसीन साथ। ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा ये हसीन साथ। दिल तो चाहता है कि यहीं ठहर जाए ये जिंदगी और ये रात।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: का आखिरी गीत था और ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से पहले फट गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रकोप अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। कांगो में अब तक 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of this bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Verma was tabled in both the Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Verma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Verma after a sum of burnt cash was found at his official residence in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said, "The government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion."
4: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
3: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah launched the Grameen Gyan Setu app through video conferencing. The app has been developed to integrate libraries in the Gandhinagar Lok Sabha constituency of Gujarat. Speaking on the occasion, Mr. Shah said the app was launched on the birth anniversary of Padma Shri S.R. Ranganathan, observed as National Library Day. He said the objective is to establish a library in every village, preferably near schools, to encourage children to read and learn. As part of the Har Ghar Tiranga campaign in Jammu and Kashmir, the Riasi District Administration organized a Tiranga boat rally in the river Chenab as part of the celebrations marking 150 years of Vande Mataram, with the aim of fostering patriotic spirit among the people ahead of the Independence Day celebrations. In Maharashtra, the campaign is gaining momentum ahead of Independence Day, with patriotic rallies, cultural programs and a range of other activities being organized across the state. The Indian fencing team collected 3 gold, 1 silver, and 1 bronze medal across various senior individual events on the third day of the Commonwealth Championship at Lagos in Nigeria yesterday. With this

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत नगमे। चलो बैठें कहीं इस दुनिया की नजरों से छुपकर, चलो बैठें कहीं दूर इस दुनिया की नजरों से छुपकर, कि इस दिल को जीना है हर एक लम्हा बस तेरे संग ही।

वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, आज भी इस दिल में एक हसीन कसक बनकर उभरती है।

वो प्यार था या नहीं, ये तो मुझे आज भी पता नहीं। वो प्यार था या नहीं, ये तो मुझे आज भी पता नहीं। पर जो एहसास तुमसे था, वो किसी और से कभी हुआ ही नहीं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, अंजू है आपके साथ।

क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, तेरे साथ जीने के सिवा अब इसकी कोई चाहत भी नहीं।

तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं, तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं कि अब आईना भी देखें तो सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आता है।

नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर गए हो। नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर हुए हो। अब तो बस जागती निगाहों को तुम्हारे आने का इंतजार रहता है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत था, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। स्टूडियो में भारती आ चुकी हैं और अगला कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जल्द मिलूंगी, शुभरात्रि।

संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

कभी कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। जहां एहसास सच्चे हों वहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ चलने वाला अपना हो। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वह रास्ता होता है जो किसी अपने के साथ तय हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्यार वो एहसास है जो बिना आवाज दिए दिल की दुनिया बदल देता है। एक सच्चा साथ पूरी जिंदगी को मुस्कुराने की वजह दे देता है।

मोहब्बत का जादू किसी तिलिस्म से कम नहीं होता। जिस दिल में प्यार बस जाए, वहां हर पल एक नई खुशी जन्म लेती है।

इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, तो खामोशी भी गजल बन जाती है।

प्यार में दीवानगी तब खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा और अपनापन शामिल हो। सच्ची मोहब्बत हर धड़कन को एक मीठी धुन में बदल देती है।

और समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा. जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 4:10 पर. फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा. तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ. जल्द मुलाकात होगी.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम

0: इरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution.

एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म आखिरी खत के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार खयाम, गीतकार कैफी आजमी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार ओपी नायर, गीतकार साहिर लुधियानवी।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। और इस प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार मनोज कुमार, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सीता और गीता से मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंचल से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार सी रामा चंद्रा।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भूर सुहानी में। तब तक ले रही हूँ आपसे विदा और छोड़ कर जा रही हूँ प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म हम साथ साथ से, फिल्म हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, अलका यांग ने अनुराधा पोटवाल, कुमार सानू, उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में, गीतकार आर किरण, संगीतकार राम लक्ष्मण। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है, इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त

हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

हर सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नई सुबह अपने साथ नई ऊर्जा, नए अवसर लेकर आती है। बस हमें खुले मन से उनका स्वागत करना है।